बिल्कुल, वादा जो है वो निभाने के लिए ही होता है, तोड़ देने के लिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, गाने जो है वो तोड़ने पे भी बनते हैं और निभाने पे भी बनते हैं। ये जो गाना था ताजमहल फिल्म का, फिल्म तो खैर अपने आप में कमाल थी ही, गाने एक से बढ़कर एक। और ये जो गाना सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, इस गाने को सुनना चाहा था अनिल जैन, जैन साहब, संजय जैन, मुस्कान मास्टर, जीवियम।

और उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। आगे ये जो गाना आ रहा है ये सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, MS अब्बासी और उनका पूरा परिवार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

बॉक्स में ये गाना चरस फिल्म से आपने सुना। माणिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत हेमंती, रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े, इन सब की पसंद पर। और अब बढ़ते हैं हम अगले गाने की तरफ, जो कि है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन की पसंद का गाना। तो इस गाने को एंजॉय कीजिए। आप सुन रहे हैं दिल का मेलबॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

में ना हम कुछ भी कहें, जाने, समझें, लेकिन रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं ना कि हम जैसा उनके साथ करेंगे वैसे ही रिश्ते हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते, बहुत सारी जगहों पर ऐसे अभी नहीं होता है कि आप जिस तरह से रिश्तों को मानते हो वो रिश्ता भी आपको उसी तरह से माने। लेकिन ठीक है, रिश्तों की अपनी एक परिभाषा है और उस परिभाषा को हर कोई अलग तरह से मान सकता है, ये भी एक बात है। पर गाने की बात जहाँ तक है, तो बदलते रिश्ते फिल्म का गाना था ये, और जिन्होंने सुनना चाहा था उनके नाम मैं बता चुकी हूँ। अब इस प्रोग्राम का आखिरी गाना आप सुनने जा रहे हैं। डबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष खुदाबख्श, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल की पसंद पर, तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में। तो नीतू चलती है, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित राज्य में अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अशोक धाम स्टेशन से मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजली का एक खंभा गिरने से करंट आने की अफवाह के कारण अफरा तफरी मची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर मेहमान सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा।

कुछ जगह ऐसी होती है ना जिनके बारे में कितना भी कहा जाए कम ही लगता है। उनकी खूबसूरती को ना वहां जाकर ही महसूस किया जाता है। और ऐसी ही है हमारी आज की डेस्टिनेशन मध्य महेश्वर, जहां कुदरत अपने प्योरेस्ट फॉर्म में दिखती है, जहां कुदरत की पवित्रता इतनी ज्यादा हो वहां अपने अंदर अध्यात्म का संचार वैसे ही होने लगता है। और ये तो है भी भगवान शिव का धाम। तो आज तस्वीर मध्य महेश्वर की 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक शांत जगह है मधमहेश्वर। पंच केदार में से एक मधमहेश्वर समुद्र तल से लगभग 3,200 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुंचने का सफर आसान नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो हमारे जितने भी तीर्थ हैं वहां की यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। वो तो अब सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, पर असल में तो हर तीर्थ यात्रा बेहद कठिन ही हुआ करती थी। लेकिन उस कठिनाई को पार करके जब हम अपने आराध्य का दर्शन करते हैं तो वो दर्शन और भी पवित्र हो जाते हैं। और इस यात्रा में तो रास्तों की सुंदरता बेमिसाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन इस गाने के बाद।

मध्य महेश्वर तक पहुंचने के लिए करीब 24 किलोमीटर का ट्रैक है, जहां रास्ते में आपको मिलेंगे कई पहाड़ी गांव, पर असली खूबसूरती ना उन रास्तों में है जहां कहीं आपको फूलों की घाटियां दिखेंगी और कहीं ऊंचाई से गिरते हुए झरने जिनकी छींटे दूर दूर तक महसूस किए जा सकते हैं, और अगर आप लकी हुए बरसात का मौसम हुआ तो आपको जमीन पर ही रेनबो भी देखने को मिल सकता है। हरे भरे घास के पहाड़ी मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनके ऊपर उड़ते रुई जैसे बादल, और रास्ते में बहुत सारे गांव, जैसा मैंने कहा था कि कुछ चीजें ना तभी महसूस की जा सकती हैं जब आप खुद वहां जाएं। मध महेश्वर ऐसा ही है और वहां तक पहुंचने का सफर भी।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हम तस्वीर में उस जगह की बात कर रहे हैं जो कि है भगवान शिव का धाम, जिसे पंच के

चार में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के शमन की प्रार्थना के लिए भगवान शिव की खोज की, तो भगवान शिव ने अपने शरीर को पांच हिस्सों में बांटकर उन्हें दर्शन दिए। जिन जगहों पर भगवान के ये पांच हिस्से प्रकट हुए थे उन्हें पंच केदार के रूप में पूजा जाता है और केदारनाथ में शिव जी की पीठ प्रकट हुई थी ऐसा कहते हैं। रुद्रनाथ में उनका मुख, तुंगनाथ में उनकी बाजू, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं और जहां उनका धड़ प्रकट हुआ था वो जगह है मध्य महेश्वर, जिसकी बातें आज हम कर रहे हैं तस्वीर में।

ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर दूर है मधमहेश्वर मंदिर, जो चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ पर्वत चोटियों के ठीक सामने है। यहाँ से जहाँ तक भी आप नजर दौड़ाते हैं तो तीन तरफ खुला मैदान दिखेगा, ऊपर साफ सुथरा लंबा चौड़ा आकाश और दिखती हैं ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ और पास में बहती हुई मधुगंगा नदी। भगवान के दर्शनों के बाद आप चाहें तो 2 किलोमीटर आगे बूढ़ा मधमहेश्वर भी जा सकते हैं, जो कि मधमहेश्वर से भी पुराना माना जाता है। लेकिन चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, पर ऊपर जाने के बाद जो व्यू आपको दिखेगा वो हर तरह की थकान मिटाने के लिए काफी है। केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल, कामेट और पंचशूली जैसी कई चोटियों के सुंदर नजारे यहाँ से दिखाई देते हैं। यहाँ छोटे छोटे तालाब हैं जहाँ का पानी इतना ठहरा हुआ और ट्रांसपेरेंट है कि आसपास की पहाड़ियों का रिफ्लेक्शन उनमें साफ साफ नजर आता है।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है तस्वीर जिसमें बात हो रही है मध महेश्वर की। नंदीकुंड झील, कंचनी ताल जो कि एक ग्लेशियर झील के तौर पर है, जो कंचनी ताल जो है वो एक ग्लेशियर झील है और ये दोनों ही ना बहुत ही ऊंचाई पर हैं और आप इन्हें देखना चाहें तो ट्रैक ही एकमात्र जरिया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो ट्रैक है ये और भी ज्यादा मुश्किल है और आपको वापस भी पैदल ही आना है। तो अगर आप मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हैं तो ही आगे बढ़ें और पहुंच जाएं, इन सब ट्रैक्स को पूरा करें और वापस आएं सही सलामत।

मधमहेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। इस दौरान मौसम जो है वो सही रहता है और ट्रैक करना आसान होता है। मॉनसून के समय पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना वैसे थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसलिए अवॉइड करते हैं मॉनसून के दौरान यहाँ जाना। लेकिन मॉनसून में जिस तरह की से कुदरत धुल जाती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज्यादा तेज सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है यहाँ पर, तो मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान जो भगवान की पूजा है वो ऊखी मठ में की जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप मई से जून या सितंबर से अक्टूबर के बीच यहाँ जाएं तो मौसम सुहाना रहेगा और आपको भी ट्रैक करने में मजा आएगा।

आप भी जाने का सोच रहे हैं मद महेश्वर, तो फिर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग पहुंचना होगा। उसके बाद सड़क मार्ग से ऊखी मठ और वहां से टैक्सी लेकर रांसी या अगतोली धार तक पहुंचना होगा। वहां पर कई होम स्टेज भी हैं, आप चाहें तो एक रात वहां रुककर आगे का सफर शुरू कर सकते हैं। वहां से घोड़े, पोर्टर और गाइड की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। और रांसी या अगतोली से मध्य महेश्वर के लिए लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो शुरू होता है, यानी आपको पैदल यात्रा करनी है। लेकिन रुद्रप्रयाग तक पहुंचने के लिए या उस तरफ जाने के लिए जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश है, और हवाई अड्डा जो है वो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। तो आपको जो समझ में आए, जैसे रास्ता आपको सही लगे, आप वो इस्तेमाल कीजिए और पहुंच जाइए मध महेश्वर। फिलहाल नीतू के जाने का समय हो गया है, तो मैं चलती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होती है इसी चैनल पर, आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय

0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government will soon constitute a high-level committee for public sector banks. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the 2-day public sector bank conclave in New Delhi today. The finance minister added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. She further noted that bankers will set the tone of economic

0: 당근.
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ रेनू
2: और रश्मि कुकरेती। हम स्वीकार कीजिए हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। आज है सावन का तीसरा सोमवार यानी कि शिव के आराधन पूजन का दिन। सावन हरियाली है, सोम भक्ति है, शिव है शक्ति
2: जी, और शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव सत्य हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव सृजन है तो शिव संहारक भी हैं, और शिव अहम है तो शिव ही ब्रह्म है,
1: और वो शिव ही तो है जो कणकण में है, हर कंकड़ में है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गूंज है।

0: शिव भक्ति से सराबोर, अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी भैरवी और आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति की।
1: जी, और रेनू, एक चीज जो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, जिसके बिना लगता है कि जिंदगी एकदम थम सी जाए।
0: बिल्कुल, तो भाई वो क्या है, आप ही बताइए।
1: वो है मोबाइल। और कभी सोचा है अगर इसके बिना एक दिन बिताना पड़े तो कैसा लगता है?
0: अरे बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता, लेकिन यही है आज का हमारा सवाल कि आपके वो अगर एक दिन कभी मोबाइल के बगैर बिताना पड़े तो क्या हो, कैसे कैसे आप उसे मैनेज करेंगे। तो लिख दीजिए हमें आपको, जैसा कि हमारा एड्रेस आपको पता ही है, fmgoldga@gmail.com। तो इस पर आपके पत्रों का और आपके मेल्स का हमें रहेगा इंतजार।
1: और भाई रेनू, अभी जो गीत आप सुनवा रहे थे, हर सपना एक सांप है मन से लिपटा जाए, विषमृत कबहू न बने काहे जतन लगाए। भाई चर्चा हो रही है विषमृत और सांपों की, और आज तो आज बड़ा विशेष दिन है, आज श्रावण का सोमवार। आपने ये सुंदर भजन सुनाया और उसके बाद
0: बिल्कुल आज नाग पंचमी जो है भाई, और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ये त्योहार केवल त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपरा, आस्था और प्रकृति के साथ गहरे संबंधों का भी प्रतीक है। लोक आस्था और परंपरा से जुड़े इस अनूठे पर्व में नाग देवता की, उनके प्रतीक या उनके चित्र की पूजा की जाती है और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की जाती है।
1: जी, और आज के दिन झूले, लोकगीत, मेले, इन सब का आयोजन भी होता है। विशेषकर अगर हम थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएं और नागपंचमी के इस पर्व में कथाओं और मान्यताओं के साथ साथ प्रकृति संरक्षण और लोक परंपराओं का भी गहरा संदेश निहित है। हमारी संस्कृति में नागों के पूजने की परंपरा है और ये रेनू जो है ना, मनुष्य और प्रकृति के सह अस्तित्व की भावना से हमें परिचित कराती है। हर जगह इस त्योहार को मनाने की विधियां और लोक मान्यताएं भले ही अलग हों, लेकिन इसके केंद्र में जो है वो प्रकृति है, आस्था है, सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है, ये समान रूप से दिखाई देता है।
0: बिल्कुल समान रूप से दिखाई देता है और यह आध्यात्मिकता का जो है समन्वय भी है। और शेष नाग, वासुकी नाग और तक्षक से नागों का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। भगवान विष्णु की सैया में शेष नाग हैं, तो नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के गले का हार हैं, तो तक्षक उनकी भुजाओं का आभूषण। इसीलिए इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने की परंपरा है और मान्यता यह है कि भगवान शिव प्रिय माह अपने जो सावन में आने वाला त्योहार होता है, इसमें नागों की पूजा करने से भक्तों पर शिव कृपा होती है। और आज सावन का सोमवार है तो भाई नागपंचमी भी है और ये जो अद्भुत योग है इसमें तो भाई भक्तों पर शिव की विशेष कृपा होगी ही।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नागिन और आवाज लता मंगेशकर की। अमृत लाल नागर हिंदी साहित्य के उन गिने चुने मूर्धन्य लेखकों में हैं जिन्होंने जो कुछ लिखा वो साहित्य की निधि बन गया। उन्होंने इतिहास को लोक स्मृति से, लोक संस्कृति को यथार्थ से और साहित्य को आम आदमी के जीवन से जोड़ा।
1: और आज उनकी जयंती है, हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनकी कहानी और उपन्यासों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जितने विविध चरित्र उन्होंने निर्मित किए वो कहीं नहीं मिलते। उन्होंने समाज के उपेक्षित और हाशिए के पात्रों को अपनी रचनाओं में आवाज़ दी। दहेज, शोषण और बेमेल विवाह जैसी सामाजिक विसंगतियों के साथ उन्होंने मानवीय मन और उनके जो अंतर्द्वंद होते हैं उसको बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय संस्कृति, खासकर लखनऊ की तहजीब और लोक संस्कृति के सजीव रंग उनके साहित्य में दिखता है। और इतिहास, पुराण, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों पर उनके गहन अध्ययन ने उनके साहित्य को व्यापक दृष्टि दी।

0: इतिहास को कल्पना और यथार्थ के साथ जोड़कर जीवंत करना उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका उपन्यास मानस के हंस को स्वामी तुलसीदास और उनके समय का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का सजीव चित्रण है।
1: और भाई नाचियो बहुत गोपाल को हम कैसे भूल सकते हैं, साथ ही खंजन नयन जो सूरदास के समय और उनके लोक जीवन की झलक मिलती है। इसी तरह से उनकी जो अन्य कृतियां हैं गदर के फूल या बूंद और समुद्र, और उसमें भी जिसे कहते हैं ना व्यक्ति और समाज के गहरे संबंधों का यथार्थवादी और संवेदनशील चित्रण है।
0: बिल्कुल, और नागर जी का साहित्य इतिहास यथार्थ और लोक संस्कृति का सुंदर समन्वय तो है ही। उन्होंने इतिहास को केवल राजाओं युद्धों और राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे आम जनजीवन के उनकी स्मृतियों संघर्षों और लोक विश्वासों से जोड़ा। उनका साहित्य आज भी भारतीय समाज और संस्कृति और लोक जीवन का जीवंत दस्तावेज है।
1: और भाई रेनू, उन्होंने बंबई में 7 साल काम किया और बहुरानी, संगम, कुमारा बाप, किसी से न कहना, पराया धन जैसी कुल 18 फिल्मों के लिए संवाद लिखे, पटकथा लिखी। और हम ये भी बताना चाहेंगे उनकी सुपुत्री अचला नागर, वो भी प्रख्यात लेखिका हैं। उन्होंने बागमा और निकाह जैसी फिल्मों की जो पटकथा और कथा लिखी है और वो सुपरहिट फिल्में रही हैं। तो ऐसी जिसे कहते हैं ना कि ऐसे साहित्यकार की ऐसी सुपुत्री, और ये दोनों आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य सेवा इनका जीवन ही रहा पूरा। तो उनकी जयंती पर आज हम उन्हें नमन तो कर ही रहे हैं लेकिन उनके प्रति जो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होगी कि जब भी हमें अवसर मिले उनकी किताबों को हम पढ़ें और गुनें।
2: प्राण प्राण प्राण था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनननन झनननन झनननन प्राण प्राण प्राण था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनननन झनननन झनननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया

0: सवारे थे और नील गगन पे।
1: झनक झनक पायल बाजे, अभी आपने इस फिल्म से सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे को, और रश्मि जी लगता है कुछ मेल हमें प्राप्त हो गई हैं अब।
2: जी बिल्कुल। तो क्योंकि आपने आज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया था भाई कि अगर मोबाइल आज एक दिन आपके ना मिले या आपके पास ना हो तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ जवाब आ गए हैं, ईमेल्स आ गई हैं। वो कह रहे हैं राजू अग्रवाल जी, केशव प्रियांशी चौधरी वास हिसार से कह रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ों के आविष्कार हुए थे, बेमतलब का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल का, ये बहुत गलत बात है। भाई हम कर क्या सकते हैं, पत्नी के सामने हाथ जोड़ कर गुजारा कर सकते हैं लेकिन हाँ। बच्चों का क्या करें, मोबाइल बगैर ना रोटी खाते हैं, आपस में झगड़ते हैं, भाई जरा देख कर चलो मोबाइल, घर जाकर सुनो मेरी गाड़ी से टकरा जाएगा, आपके चाहने वालों को रुला जाएगा, मतलब कविता सी इन्होंने लिख दी है। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छे गीतों के कारण हम रेडियो सुनते हैं, तो FM गोल्ड की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो धन्यवाद आपको, लेकिन अच्छी बात है आप समझदार हैं कि मोबाइल के बगैर भी गुजारा करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और मोबाइल अगर नहीं रहे, अगर पहले नहीं भी होता था तो देखिए ना काम चलता ही था। तो ये दूसरी मेल जो मेरे पास सामने है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और ये लिखते हैं शांति नगर सोनीपत से, और ये कह रहे हैं कि जिंदगी में खुश रहना है तो किसी भी चीज़ का शौक रखना तो ठीक है लेकिन उसे आदत नहीं बनानी चाहिए।
2: जी, और योगी दीक्षित पीतमपुरा दिल्ली से कहते हैं मैं 70 वर्षीय वृद्ध हूँ और मोबाइल का जमकर प्रयोग करता हूँ, लेकिन रील देखने के लिए नहीं, ब्लॉग लिखना, मेल, मैसेजिंग, बैंकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जितने भी काम ऑनलाइन हो सकते हैं मोबाइल से करता हूँ। मेरे जानकार चकित होते हैं कि इस आयु का व्यक्ति इतना टेक्नोसेवी कैसे हो सकता है, मेरे लिए एक दिन भी मोबाइल के बिना रहना मुश्किल नहीं है। FM रेडियो भी सुनता हूँ मोबाइल से, ये काम आप बहुत अच्छा करते हैं योगी जी, जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।
1: और एक और मेल है मेरे हाथ में, ये है लिख रहे हैं उग्रसेन यादव जी, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और ये लिख रहे हैं कि जिस वस्तु के लिए जितना हो उतना दूर रहना चाहिए, लेकिन जरूरत तो है, जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छी बात कही है।
2: और उमेश कुमार ख्याला से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो भाई हम FM के कार्यक्रम कैसे सुनेंगे, FM गोल्ड कैसे सुनेंगे। जी FM गोल्ड तो सुनिए, लेकिन भाई वो भी तो दूर रखकर सुना जा सकता है, क्योंकि आकाशवाणी तो और रेडियो ऐसा माध्यम है कि उसको तो मोबाइल में हाथ लेने की जरूरत नहीं, बस उसे बजाइए आराम से, उसका ऐप डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन एयर, और अपना मनपसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड और इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल आप सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मोबाइल का प्रयोग कीजिए लेकिन सीमित, और इतना ना कीजिए कि वो आप पर हावी हो जाए। और बात इसकी है कि जब कोई चीज़ हावी हो जाती है या कोई भी चीज़ स्वास्थ्य पर आपके हानिकारक होती है तो उस पर ध्यान देना ही चाहिए, और अगर बच्चों के स्वास्थ्य की बात आती है तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है।
2: मुझे लग रहा है तुम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की बात कर रही हो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदाजा सही था। और बच्चों के पेट में कीड़े यानी कृमि संक्रमण का होना एक आम समस्या तो है, लेकिन उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए ये बहुत हानिकारक हो सकते हैं। ये परजीवी आंतों में रहकर बच्चे के भोजन में जरूरी पोषक तत्व उससे चूस लेते हैं।

0: जिसका उनके स्वास्थ्य पर, पोषण पर और पढ़ाई पर, तीनों पर जो है वो प्रभावित होती है।
1: जी बिल्कुल, अगर पेट में कीड़े हों तो देखें ना, बच्चों को जब भी एनीमिया होता है सबसे पहले डॉक्टर यही शक करते हैं कि शायद पेट में कहीं कीड़े ना हो, तो इसीलिए 18 से 22 अगस्त तक दिल्ली में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 1 से 19 साल तक के जो सभी किशोर किशोरी हों उनको कृमिनाशक गोली बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, और ये दवा जो है सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को दी जाएगी।
0: बिल्कुल, तो इस अभियान से में शामिल होकर विशेषकर बच्चे इसे सफल बनाएं और अपने स्वास्थ्य, पोषित और कृमि मुक्ति भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं।

0: आकाशदीप, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को।
1: जी, और भी काफ़ी सारी मेल्स आ गई हैं रेनू।
0: हाँ, ये मेल एक मेरे पास मेरे सामने खुली हुई है। ये है राजेश शर्मा जी, और ये लिखते हैं कि मैं तो संडे को अपने परिवार के साथ टीवी देखता हूँ या कुछ किताबें पढ़ता हूँ। अपने परिवार में संडे को मोबाइल और इंटरनेट बंद रहता है, सिर्फ कॉल सुनने के लिए या फोन करने के लिए ही फोन का उपयोग करता हूँ। ये सिर्फ संडे को होता है।
1: वाह, क्या
0: तो
1: बात है,
0: भाई
1: डिजिटल ब्रेक ले लेते हैं
0: बिल्कुल,
1: ये।
0: अब ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर
1: जी
0: पूरा नहीं छूट सकता तो कम से कम थोड़ा

0: थोड़ा ब्रेक जरूरी है।
1: राघव दिलशाद गार्डन से कह रहे हैं, मैं घर के काम निपटाता हूँ, परिवार के साथ चाय पीता हूँ, पुराने फोटो देखता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ। भाई पता चलता है घर में भी तो बहुत सारे नोटिफिकेशन है, बस उनकी आवाज इंसानों की है। और सुरभि हमारे साथ मोबाइल जुड़ गई हैं मयूर विहार से। वो कहती हैं कि भाई मैं जो हूँ पहले 2 घंटे तो मोबाइल ढूंढूंगी, तीसरे घंटे चार्जर ढूंढूंगी और चौथे घंटे में मुझे समझ आ जाए कि आज मोबाइल नहीं है, फिर तो मजबूरी में परिवार से बात करनी पड़ेगी। फिर हंस रही हैं, कहती हैं कि नहीं मैं मोबाइल छोड़कर किताब परिवार

0: थी। तीसरे घंटे चार्जर ढूंढूंगी और चौथे घंटे में मुझे समझ आ जाए कि आज मोबाइल नहीं है, फिर तो मजबूरी में परिवार से बात करनी पड़ेगी। फिर हंस रही है, कहती है कि नहीं, मैं मोबाइल छोड़कर किताब, परिवार और प्रकृति के साथ समय बिताऊंगी और कोशिश करूंगी कि कम से कम एक बार घड़ी देखकर ये ना सोचूं कि फोन कहाँ है।
1: बिल्कुल सही है। तो अगर आप सोच रही हैं तो जरूर ये कर गुजरेंगी और ब्रेक, डिजिटल ब्रेक जरूर लेंगी। और रश्मि जी, अब चलते हैं उड़ीसा के ओर और अपनी संस्कृति और कल्चर की कुछ बातें जानते हैं, समझते हैं। उड़ीसा भारत का एक समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों वाला राज्य जो जाना जाता है अपनी अनूठी परंपराओं और वास्तुकला के लिए भी।
0: जी, और जो उड़ीसा का कटक शहर है वो जाना जाता है सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के रूप में, क्योंकि यहाँ होती है विश्व प्रसिद्ध रूपा तारकशी, यानी चांदी की कलाकृति जिसे सिल्वर फिलिग्री कहा जाता है। कटक की ये बारीक शिल्प कला लगभग 500 वर्ष पुरानी है और आज तक जीवित है।
1: बिल्कुल, और उड़िया भाषा में तार का मतलब है तार और कशी का मतलब है डिजाइन, जिससे शुद्ध चांदी को पिघलाकर इंसानी बालों से भी बारीक, सोचिए इतनी बारीक जो है वो डिजाइन बनाई जाती है। इन तारों को आपस में मोड़कर, गढ़कर सुंदर और जटिल जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। इससे बहुत ही नाजुक आभूषण जैसे कि झुमके, पायल, अंगूठियां, हार तैयार किया जाता है। सिकरी या सांकल यानी चेन भी इसी बारीक तारकशी की कला का नमूना है।
0: भाई वाह, भाई ओडिसी नृत्य की जो नर्तकियां होती हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण जैसे सिर का सिंथी, बाजूबंद, बेल्ट इसी तारकशी तकनीक से बनाए जाते हैं। उड़ीसा की संस्कृति में शादी के समय दुल्हन को तारकशी से बनी चांदी की पायल और बिछिया देना बहुत शुभ और अनिवार्य माना जाता है।
1: बिल्कुल, और आभूषणों के अलावा रश्मि जी पता है इस तारकशी की डिजाइन से सजावट की भी बहुत सारी वस्तुएं, पूजा के बर्तन बनाए जाते हैं। और इस कला को मुख्य तीन शैलियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि रोज वर्क यानी फूल पत्ती की डिजाइन, सीको वर्क यानी मोटे तारों से बना मजबूत फ्रेम, और होता है जाली वर्क यानी महीन जाल की नक्काशी। कटक की मशहूर दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के मुकुट और झांकियों को सजाने के लिए इसी चांदी की तारकशी कला का विशेष रूप से उपयोग होता है।
0: और इसी कारण रेनू भारत सरकार द्वारा इसे GI टैग भी प्रदान किया जा चुका है। तो अगर आप भी उड़ीसा के इस सिल्वर फिलिग्री के गहने को खरीदना चाहते हैं तो उड़ीसा राज्य सरकार के हस्तशिल्प विभाग के अंतर्गत काम करने वाली सहकारी संस्था हस्तशिल्प निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट उत्कलिका उड़ीसा के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। यहां से आपको सीधे और असली और प्रामाणिक सिल्वर फिलिग्री उपाधि मिलेगा।

0: और ये गीत सुना आपने, फिल्म थी मेला और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और रश्मि जी, एक और मेल मुझे प्राप्त हुआ है, ये है राधा पाठक। ये लिखती हैं कि मोबाइल के बिना या तो मैं कोई किताब पढ़ती हूँ या अपने बच्चों के साथ फिल्में देखती हूँ। तो भाई बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ तो वक्त बिताना ही चाहिए, और मोबाइल के अलावा अगर आप बच्चों के साथ बिताती हैं तो यही तो संस्कार और जो आपके घर के परंपरा है उसको समझाने का और सिखाने का मौका मिलता है, बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।
1: शीशपाल अकेला जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई आज का विषय बहुत गजब का है। और हमारे साथ जो है वो विवेक बिहार से जुड़ गए हैं अनुवंश, वो कह रहे हैं कि मैं मोबाइल के बिना एक दिन बिताऊंगा लेकिन पहले कैलेंडर में लिखूंगा कि आज मोबाइल नहीं चलाना है। ओ वो भी तो मोबाइल में ही है, ऐसा कह रहे हैं वो। और साथ ही कहते हैं कि सुबह उठकर मोबाइल ढूंढने की आदत है, मोबाइल नहीं मिलेगा तो शायद फिर बड़ा मुश्किल होगा, और फिर भाई घर वालों से पूछूंगा कि भाई वाईफाई का पासवर्ड किसे पता है, फिर याद आएगा कि भाई वो भी तो मोबाइल में ही है, तो कहेंगे भाई मेरे को बहुत दिक्कत होगी मोबाइल के बिना एक दिन बहुत मुश्किल है साहब, ना घड़ी ना मौसम ना इतनी सारी जानकारी से हम कैसे वंचित रहेंगे, तो आखिरकार हम रेडियो ही सुनेंगे, आखिर मोबाइल गया तो रेडियो तो है ना, ऐसा कहते हैं वो।
0: बिल्कुल सही बात है, और बात तो आपकी वैसे भी सही है क्योंकि मोबाइल हमारे जीवन में इतनी गहराई तक वो जुड़ चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके कुछ विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर मन मस्तिष्क पर पड़ते हैं, तो थोड़ी सी दूरी अगर हम बना सकें तो जरूर बनानी चाहिए। और रेडियो वाली बात आपने कही तो ये तो सच है ही
1: जी
0: है।
1: थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स हो जाए तो अच्छा है,
0: अच्छा है,
1: है ना। और जहाँ तक डिजिटल डिटॉक्स की बात है तो थोड़ा

0: मोबाइल से कभी कभी दूरी अगर बनाएंगे तो एक संतुलन जरूर बना
1: बिल्कुल
0: रहेगा।
1: बना रहेगा। और हाँ, जानकारियां भी इसी माध्यमों से मिलती हैं, रेडियो से और मोबाइल से और सब चीजों से, तो जानकारी रखनी भी बहुत जरूरी है। और अभी
0: आप
1: एक
0: कौन सी
1: जान
0: जानकारी दे रही हैं
1: हाँ
0: आप?
1: बिल्कुल आपने सही समझा। तो ये जानकारी हम देने वाले हैं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, कि भारत सरकार की ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। ये दुर्घटना योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता को कवर प्रदान करती है। इसमें एक वर्ष का कवरेज मिलता है, जिसे वार्षिक रूप से रिन्यू भी किया जा सकता है।
0: जी, और ये योजना जो है मात्र ₹20 सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख तक का कवरेज देती है। इस योजना के माध्यम से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर भी ₹1 लाख का कवर दिया जाता है।
1: प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा के लोग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी बैंक या डाकघर में आपका खाता होना बहुत जरूरी है, जहां से ₹20 की जो इसकी छोटी सी राशि है प्रीमियम की, वो आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते से अपने आप ऑटो डेबिट कट हो जाती है। तो ये योजना इतनी किफायती भी है और आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी अति आवश्यक है, तो इस योजना का लाभ अवश्य लें।

0: दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी रफी और लता की।
1: और एक और मेल हमारे पास आ गई है रेनू, आप कहो तो मैं पढ़ दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जितेंद्र कह रहे हैं गुड़गांव से, एक दिन मैं मोबाइल के बिना रह लूंगा रश्मि जी, लेकिन मैं मोबाइल को बताऊंगा कि कैसे मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ।
0: बिल्कुल
1: जी, और वो कह रहे हैं कि मोबाइल के बिना जब मैं दिन बिताऊंगा तो लेकिन रात को हिसाब जरूर लगाऊंगा कि आज मैंने कितनी बार जो है बेवजह जेब टटोली।
0: ये बात तो सही है, कभी कभी अगर मोबाइल जो है वो दूर होता है बहुत, तो एकदम लगता है कुछ मिसिंग सा है।
1: हाँ जी,
0: और एकदम से ढूंढने लगते हैं हम, जैसे लगता है घर का मेंबर ही है कोई।
1: जी बिल्कुल नहीं, मोबाइल के बिना रहने के बहुत फायदे हैं रेनू। देखो, कुछ घंटे दूरी जरूर बनानी चाहिए, तनाव कम हो जाता है, थोड़ा दिमाग को भी आराम मिलता है ना।
0: बिल्कुल सही बात है। और परिवार और दोस्तों के साथ अगर समय बिताना चाहते हैं तो जब मोबाइल छोड़ेंगे तभी तो वो समय निकल पाएगा।
1: जी, और नींद बेहतर होती है खासकर रात में, जब आप स्क्रीन से दूरी बनाते हैं, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, हमारा समय बचता है। भाई, रील्स और सोशल मीडिया में हमें पता चलता है कि कितना सारा समय बीत गया।
0: बिल्कुल। और आंखों को आराम मिलता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जर्ट होती है ना वो हमारी आंखें होती हैं। इसका प्रभाव डिजिटल, जब स्क्रीन के सामने हम होते हैं तो सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव जो है वो हमारी आंखें झेलती हैं। आंखों में दर्द होता है, फिर सिर दर्द होता है और बड़ी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं।
1: भाई, आपको किताब पढ़ने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, संगीत सुनने का और प्रकृति के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो बताऊं आपको,
0: बिल्कुल
1: आपको पता चलता है कि मोबाइल जिंदगी का हिस्सा है, वो पूरी जिंदगी नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन नजर हमारी घड़ी की तरफ भी है और घड़ी ने इशारा कर दिया है कि अब हमारे समय समाप्त हो गया है और हमारे कार्यक्रम को यहीं हमें समेटना होगा। तो मुझे यानी रेनू को दीजिए
1: और रश्मि कुकरेती को आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन से दीजिए अनुमति, हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए।
0: बिल्कुल, और इसी तरह खुश रहिए, आबाद रहिए और आनंद लीजिए हमारे कार्यक्रम का, लेते रहिए,
1: जिसका नाम है घर आंगन।
2: आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत

0: ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government will soon constitute a high-powered committee on banking in achieving the vision of a Vikasit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the 2-day public sector bank conclave in New Delhi today. She added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. Ms. Sitharaman expressed hope that the outcomes of the discussions will provide valuable substantive inputs to the committee as it formulates its recommendations on the future role of banks. She noted that Indian banks are in a position of strength with non-performing assets at their lowest ever levels, providing a strong foundation for further reforms.
3: On the basis of a well-researched set of documents which have been shared with you,

कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, संगीत का आनंद लेने के लिए कभी कभी सिर्फ मन से ही काम चल जाता है। जरूरी नहीं है कि उसे समझा भी जाए, मतलब भाषा समझ में भी आए। अभी हाल फिलहाल में भी आपने कई ऐसे गाने सुने होंगे जो दूसरी भाषा में थे, लेकिन आपको फिर भी बड़े अच्छे लगे। आप भले ही उनके शब्दों को गुनगुना ना सके हो, लेकिन हाँ, आप मन ही मन ऐसे ये सब तो करते ही होंगे, है ना। अच्छा, साल 1982 में भी एक ऐसी फिल्म आई थी जो कि अवधि और भोजपुरी भाषा में थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि करीब करीब पूरे देश में खूब गुनगुनाए गए। फिल्म का नाम था नदिया के पार। राजश्री प्रोडक्शंस की इस सुपरहिट फिल्म के लीड एक्टर का नाम तो आपको पक्का याद होगा, है ना, सचिन पिलगांवकर। आज कलाकार बेमिसाल में उन्हीं की बातें करने वाले हैं हम। हाँ,

हेमलता और जसपाल की आवाज में नदिया के पार फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना जो किसी जमाने में बहुत बहुत बहुत ज्यादा सुना जाता था। जी हाँ, इस एल्बम के वैसे तो सारे ही गाने बहुत मशहूर रहे, लेकिन इस गाने को खास तौर से पसंद किया जाता था। दोस्तों, पर्दे पर इस गाने में नजर आए सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह। नदिया के पार फिल्म का जो संगीत है वो दिया था रविन्द्र जैन ने, और आप तो जानते हैं किसके सारे गाने हिट रहे थे। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसे भारत के बड़े हिस्से में देखा गया, इसके गानों को खूब सुना गया। और इस फिल्म में जो लीड एक्टर थे सचिन पिलगांवकर, उनकी जो लाइफ है उसकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फिल्म मानी जाती है नदिया के पार। दोस्तों, सचिन पिलगांवकर हिंदी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं। सचिन को आज की पीढ़ी शायद उतना ना जानती हो जितनी बड़ी उनकी शख्सियत है। 17 अगस्त 1957 को मुंबई में जन्मे थे सचिन, और उनकी जो माताजी हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी माताजी उन्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उनके पिता शरद पिलगांवकर उन्हें हमेशा से ही फिल्मों से जोड़ना चाहते थे। शरद एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे। तो अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर सचिन क्या चाहते थे, सचिन क्या चाहते थे, सचिन जो चाहते थे उन्हें वही मिला है। चलिए सुनाती हूँ आपको एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, आगे की कहानी इस गाने के बाद।

मैं सच बता रही हूँ, ईमानदारी की बात है कि मुझे पहले नहीं मालूम था कि ये जो गाना है ये सचिन पिलगांवकर के ऊपर फिल्माया गया है, क्योंकि सचिन बहुत ही भोले से दिखते हैं चेहरे से, और ये सुपर रोमांटिक गाना है किशोरदा की आवाज़ में आपने सुना इसे, और कॉलेज गर्ल फिल्म से ये गाना है जो कि फिल्माया गया था सचिन और बिंदिया गोस्वामी पर। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत गाना है, और वाकई सचिन के अंदर ये काबिलियत है कि हर तरह के रोल, हर तरह के किरदार वो बहुत ही आराम से निभा जाते हैं। दोस्तों, सचिन पिलगांवकर फिल्मों तक कैसे आए इसके पीछे एक कहानी है। सचिन के पिता के एक जानकार हुआ करते थे सूर्यकांत, जो कि एक एक्टर थे। सचिन बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत से बचपन से ही बहुत ही प्यारे लगते थे। तो सूर्यकांत ने जब उन्हें देखा तो सचिन के पिता से कहा कि कोल्हापुर में ऑडिशंस चल रहे हैं और वहाँ पर तुम चाहो तो सचिन को लेकर जा सकते हो। सचिन के पिता तो चाहते ही थे कि सचिन फिल्मों में जाएं, तो बस झट से उन्हें लेकर चले गए। सचिन सिलेक्ट भी हो गए, उम्र रही होगी करीब 4 साल, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि उस वक्त उन्हें किसी वजह से वो वाली फिल्म नहीं मिल पाई, और उनका करियर जो है ना वो शुरू हुआ 1962 में आई फिल्म हा माजा मार्ग एकला से। माफ़ कीजिए, मुझे मराठी नहीं आती तो नाम हो सकता है गड़बड़ बोला हो मैंने। तो सचिन की ज़िंदगी में ये जो फिल्म थी ये बेहद ख़ास रही, आप कह सकते हैं कि सबसे ख़ास। कैसे, किस तरह से बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये वाला गाना।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बचपन फिल्म का ये गाना आपने सुना और इस फिल्म में राम की भूमिका में नज़र आए थे सचिन। ये सचिन की उन फिल्मों में शामिल है जिसमें वो ना तो बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे, यानी कि टीनेज में थे। बताऊंगी आपको कैसे सचिन के करियर की शुरुआत हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है और बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, बताऊंगी। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपको तो कहीं नहीं जाना है, हाँ रेडियो के पास ही बैठे रहिए आप। हाँ
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बातें हो रही हैं सचिन पिलगांवकर की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी आपको कैसे उनके करियर की शुरुआत हुई, और एक बहुत ही ऐतिहासिक सी ये घटना है। दोस्तों, सचिन के एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर एक मराठी फिल्म से हुई थी। नाम था हा माजा मार्ग एकला। 1962 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए भेजा गया था। उन दिनों नेशनल अवार्ड्स को प्रेसिडेंट अवार्ड्स कहा जाता था। एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक वाकया हुआ इस दौरान। फिल्म देखने के बाद जूरी ने कहा कि इसमें तो बच्चे यानी कि सचिन का जो किरदार है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो उनका मानना था कि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है इस बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन उन दिनों नेशनल अवार्ड्स में चाइल्ड एक्टर कैटेगरी शामिल नहीं थी। अब ऐसे में इस कैटेगरी को शुरू किया गया। जी हाँ, इस कैटेगरी को इसी फिल्म से शुरू किया गया। और जो पहला प्रेसिडेंट्स अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए, वो दिया गया सचिन पिलगांवकर को। कितना खास मौका रहा होगा और कितना बड़ा अचीवमेंट है ये, है ना। चलिए सुनाती हूँ आपको सचिन का एक और गाना, कहीं ना जाना। ये तो आप सबका फेवरेट गाना होगा, है ना। बहुत ज्यादा डिमांड है इस गाने की।

सचिन रहे हैं, कितने प्यारे कितने सुंदर लगे हैं इस फिल्म में। हेमलता की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना, आंखियों के झरोखे से फिल्म से, और रविंद्र जैन का संगीत था इसमें। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है सचिन की। दोस्तों, मैं बात कर रही थी उनके करियर की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला तो उनकी जो माताजी हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, उनका जो दिल है एकदम बदल गया, और उन्होंने भावुक होकर कहा अपने बेटे यानी कि सचिन से कि बेटा तू तो इसी काम के लिए बना है, जबकि वो चाहती नहीं थी कि सचिन कभी फिल्मों में आए। ये वो पल थे जिन्होंने सचिन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, और अब वो फुल टाइम एक्टर बनने की तरफ अपना कदम, अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ा चुके थे। आगे चलकर सचिन ने एक से बढ़कर एक चर्चित फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया, जैसे कि मजली दीदी, जूल थीफ, ब्रह्मचारी, चंदा और बिजली, मेला आदि। सचिन को दो बार, जी हाँ दो बार, बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है, नेशनल अवार्ड मिला है उनको दो बार। 19वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी उन्हें ये सम्मान मिला है। ये अवार्ड भी उन्हें एक मराठी फिल्म अजब तुझे सरकार के लिए दिया गया था। अपने पूरे करियर में सचिन को दो नेशनल अवार्ड्स, 6 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 मराठी फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। ऐसी पर्सनालिटी रही है सचिन की, जी हाँ। ये कोई सैड सॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, और पहचान तो गए होंगे आप बालिका वधू फिल्म से।

हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं सचिन, बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। सचिन के ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्माया गया और रजनी कुमारी के ऊपर बालिका वधू फिल्म का ये गाना है और 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लीड एक्टर के तौर पर सचिन की जो पहली फिल्म थी वो गीत गाता चल है, जो 1975 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बालिका वधू जिसका ये गाना अभी मैंने आपको सुनाया अमित कुमार की आवाज़ में, ये तो उनकी बहुत ही ख़ास फिल्म रही है। इसके अलावा अंखियों के झरोके से और 1982 में आई नदिया के पार, और इसके अलावा शोले, त्रिशूल, सत्य पे सत्ता, बैराग और अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं सचिन। अभिनय में तो सचिन ने कमाल करके दिखाया ही है हिंदी और मराठी सिनेमा में और टीवी में भी। इसके अलावा भी मराठी फिल्मों और टीवी के लिए उन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स बनाए हैं, डायरेक्ट किए हैं और फिल्म मेकिंग में भी सचिन ने बेहतरीन काम किया है। सचिन को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 साल से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है और आज भी वो सिनेमा को, टीवी को समृद्ध कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म का गाना सुनाऊं आपको? चलो पहले बताओ आप कौन सी है उनकी पहली फिल्म? ये वाली।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 17 तारीख दिन है सोमवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो मनप्रमोद घोषक श्री लोपसंग तोप्तेन तकनीकी अभियंता श्री कमेंफो और शिखा डेका ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी चटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: The second round of the men's doubles category in New Delhi, the duo were leading 6-4 in the second game when their opponents Scott Gildea and Paul Reynolds of Ireland retired hurt. Earlier, Arjun and Amsakarunan had won the first game 21-16. Talking to media after the match, the Indian duo said the support and cheers from the home crowd helped boost their confidence. They also noted that winning the early points in the first game helped them gain control of the match. Later in the day, former world champion and 9th seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland in the women's singles. Meanwhile, the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Sethi will face world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the men's singles category. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 183 for 5 in their first innings against India on day 3 of the opening test of the series at the Galle International Stadium when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Vikasit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham Temple in Bihar. 5 people killed in a fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 184 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun Hariharan Amsakarunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जनकेंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जनकेंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर

0: महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
1: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस

0: जहां अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 400

0: 68 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मिनीमेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित जसराज की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने सुना पंडित जसराज की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे संगम लिंगी और ओतेगी म्यूली की आवाज में चंद इदु मिशमी आधुनिक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगम लिंगी और ओर्तेगी म्यूली की आवाज में चंद ईदु मिशमी आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 8वीं कक्षा की छात्र येशी लामू से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर चंद शब्द।

दुनिया तो सिर्फ हाल पूछती है, दुनिया तो सिर्फ हाल ही पूछती है, फिक्र तो सिर्फ अपने माँ बाप करते हैं। ताशी दिले आप सभी को, मैं ही शिलामू पीएम श्री जीएनवी तावांग, कक्षा 8वीं की छात्रा, आकाशवाणी तावांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया। माँ और पिता हमारे जीवन के दीपक होते हैं जो अंधेरे में भी सही रास्ते दिखाते हैं। जब वे हमारे साथ होते हैं तब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं तब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। माता पिता के मृत्यु के बाद जीवन अचानक बदल जाता है। पहले जिन बातों में उनकी सलाह मिलती थी अब उन फैसलों को बोझ हमें खुद उठाना पड़ता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। माँ और पिता केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, वे हमारे पहले गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। जब हमारे साथ होते हैं तब हम उनकी मौजूदगी को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब उनके जीवन और संघर्ष का असली महत्व समझ आता है। माता पिता की मृत्यु मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। ऐसा लगा जैसे जीवन की दिशा ही बदल गई हो। हर कदम पर उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन समय के साथ मैंने यह समझा कि वे हमें कमजोर दिखाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। जब तक वे हमारे साथ रहते थे तब तक हमें उनके महत्व का पूरा एहसास नहीं होता, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जब मैंने अपने माता पिता को खोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा सहारा छिन गया हो। उनकी आवाज, उनकी सलाह और उनका प्रेम हर पल याद आने लगा। इस दुख ने मुझे गहराइयों से तोड़ दिया, लेकिन इसी दुख ने मुझे जीवन को समझने भी सिखाया। इस अनुभव ने मैंने सबसे पहले सीख यह ली कि समय बहुत कीमती होता है। हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अक्सर हम व्यस्त जीवन में उन्हें समय नहीं दे पाते और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। माता पिता की मृत्यु ने मुझे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाना सिखाया।

0: अब जीवन के हर निर्णय मुझे स्वयं लेने पड़ते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने जो संसार दिया है वही आज मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अनुभव ने मुझे दूसरों के दुख को समझने की हिम्मत भी दी। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जिसने अपने माता या पिता को खोया है तो मैं उसकी दर्द को महसूस कर पाती हूँ। इससे मेरे अंदर करुणा, संवेदनशीलता और मानवता की भावना और मजबूत हुई होती है। इस दुख से मैंने सीखा कि जीवन में कोई भी स्थाई नहीं है। हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। माता पिता हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। उनका त्याग और संघर्ष हमें अवसर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी हर छोटी बात याद आती है। माता पिता भले ही आज हमारे साथ शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी सीख, उनके संस्कार और उनके सपने हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनका सच्चा सम्मान यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले और एक अच्छा इंसान बने। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ पिता का प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें उनके जीवन रहते ही उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें ही शेष रह जाते हैं। मुझे छाँव में रखा, खुद चलता रहा धूप में। मुझे छाँव में रखा, खुद चलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने माता पिता के प्रेम में। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 8वीं कक्षा की छात्रा येशिल हमू से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर चंद शब्द। इसके साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे कविता सेठ की आवाज में फिल्म निर्जा से। शब्द रचना है प्रसून जोशी के व संगीत है विशाल खुराना का।

फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सिग्गी के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म तमाशा से अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है इरशाद कामिल के व संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म राबता से गीत, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आरकू की आवाज में फिल्म कपूर एंड सन से। मनोज मुंतशीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आरकू ने।

जा, अभी मौसमों का बदलना बाकी है। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर सा

अभी आपने सुना फिल्म सूर्यवंशी से गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में गीत करते रश्मि विराग व संगीता जामेर का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे कुमार द्वारा शब्द फिल्म मुन्ना माइकल से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल मिश्रा ने।

अभी आपने सुना फिल्म छिछोरे से गीत तुषार जोशी की आवाज में, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे निलेश मिश्र द्वारा शब्दबद्ध फिल्म बर्फी से। पापोन और सुनिधि चौहान की आवाज में इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

फिल्म बर्फी के संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। मेरी वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:27 हुए हैं। श्रोता प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। राग है मारू बिहाग। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: सिमोन एवं रामसिंह स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण हासिल किया। परम पावन 14वें दलाई लामा की 51वीं जयंती के उपलक्ष में तवांग जिले में धम्मा वर्क फॉर यूनिवर्सल पीस एंड कंपैशन का किया गया आयोजन। गोवा में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में पहले मैच के तीसरे दिन में खेले जा रहे मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाए हैं। और नई दिल्ली में PWA बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में MR अर्जुन और हरीश आमसा करणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well-researched...
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
0: वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि उच्च स्तरीय समिति सिर्फ सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र में भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई विधायक चाउ जिग्नू नामचुम के साथ महाबोधि लॉर्ड बुद्ध कॉलेज के नवनिर्मित भवन को उद्घाटन किया है। ये उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नामसाई के युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कॉलेज भवन विस्तार, प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन कक्ष, कॉलेज पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और मैत्री गर्ल्स होम सहित 6 महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। इन सुविधाओं से विद्यार्थी को शैक्षणिक अध्ययन, शोध, सांस्कृतिक गतिविधियों और समग्र विकास के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होंगे। अरुणाचल प्रदेश के गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने ईस्ट कामेंग जिले के नेरे में नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के 2-मंजिला भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नातुंग ने कहा है कि नए भवन में आधुनिक कक्षाओं के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बच्चों को बेहतर सिखाने का वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर ZPM 9 पापुवेली दोमेचेरी, पुलिस अधीक्षक शुभेंदु भूषण, EKSWCO के महासचिव कासुंग चेदा, DSWCO के सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के यिंकियोंग जिला अस्पताल तथा सिमोंग और रामसिंग स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQAS प्रमाण हासिल कर लिया है। ये जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को यिंकियोंग जनरल ग्राउंड में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत मरीजों के अधिकार और संतुष्टि, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, सुरक्षित एवं स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरण, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता, प्रभावी प्रबंधन और रिकॉर्ड रखरखाव तथा निरंतर गुणवत्ता सुधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तवांग की पवित्र भूमि से दुनिया तक शांति, करुणा, अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से तवांग जिले में सार्वभौमिक शांति और करुणा के लिए धम्म वॉक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम परम पावन 14वें दलाई लामा की 51वीं जयंती के उपलक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने तवांग मठ, खिमे मठ, सिरजा जे जामयांग, चोसोरलिंग मठ, मोनपा मीमांग सोकपा, बाइंग मोनपा फाउंडेशन, द तवांग फाउंडेशन और मोन दात्री एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के सहयोग से किया गया। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान केंद्र और मानव प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो

0: दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
1: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों में विभिन्न सेक्टरों के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा है कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जन भागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह के त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र करीब 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। पूर्वी इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कुछ दिनों बाद ये भूकंप आया है। देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। अधिकारी जानमाल के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बचाव दल घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिक एजेंसी ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप के बाद के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। दूरदराज के इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 11 विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र हुई थी।
2: लखीसराय के अशोकधाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोकधाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता।
0: बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुए। एमआर अर्जुन और हरिहरन अस्मा करणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 79वें ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बना लिए। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। और भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हुई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. The government will soon constitute a high-powered committee on banking and achieving the vision of Viksit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the two-day public sector bank conclave in New Delhi today. She added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. Ms. Sitharaman expressed hope that the outcomes of the discussions will provide valuable substantive inputs to the committee as it formulates its recommendations on the future role of banks. She noted that Indian banks are in a position of strength with non-performing

Sure.

Namo Ayaya Gevara Jaya.

Chia yung o ya namang gi ya

Tonoya genoya ya tamamara.

Ayyana

Tanya,

Shono jonbe alam no mai.

0: 多多
1: 龙丹的血落住我送我一样大呀呀刚呀呀

Tanya,

Bottom of Bajia,

Tajaji,

Tamarode, Mitre, Uto,

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोका। कार्यक्रम जरोका में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोका में पहले सुने हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे तवंग मठ के लमा पेम्पा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10

पर कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण, 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म दबंग से राहत फतेह अली खान और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत, और फिल्म मोहब्बते से लता मंगेशकर, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भट्टावरा, प्रीता मजुमदार और शाहरुख खान की आवाज में गीत। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत, फिल्म 72 आवर्स से सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया चटर्जी की आवाज में। आज रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 18 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे आनी सिटिंग और आनी यंगचिन लामू से बहुत भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे विभिन्न कलाकारों की आवाज में चंद असमिया गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं ह्यूमैनिटीज कक्षा की छात्रा जुम्बल हाटुन से परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से श्रेय घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाज में गीत, फिल्म जब वी मेट से श्रेय घोषाल की आवाज में गीत, फिल्म वेकअप सेट से कविता सेठ की आवाज में गीत और फिल्म ऊंचाई से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म कबीर सिंह से अरमान मलिक की आवाज में गीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से जुबिन नौटियाल की आवाज में गीत, फिल्म बेरिया से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में गीत, फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज में गीत, फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान की आवाज में गीत, फिल्म हीरो पंती से मोहित चौहान की आवाज में गीत, फिल्म सनम रे से अरमान मलिक, पलक मुच्चल और अमाल मलिक की आवाज में गीत, फिल्म हॉलीडे से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत और फिल्म गोलमाल अगेन से नीरज श्रीधर और सुकृति कक्कर की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग, 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री संगीताची से, 5:35 पर कार्यक्रम दांगपोक सामा, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगर बस्ती के श्री दोरजी सिंह और साथियों से मनपा लोकगीत, और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे अमाजिक में सामू और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम

सात बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे विवेकानंद केंद्र विद्यालय मुक्तो के 8वीं कक्षा के छात्र टशी गुम्बू से कविता। कविता का शीर्षक होगा कबीर की सखियां। 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से चंद गीत, जिसमें पहला गीत आप सुन सकेंगे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत, दूसरा गीत आप सुन सकेंगे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में गीत, और तीसरा गीत आप सुन सकेंगे चित्रा की आवाज में। कल शाम 7:25 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर रीजनल न्यूज। 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत फिल्म केसरी से बी पारा की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि की ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

Thank you.

0: hanginang stada lunting ka tawang numing odun hindun lirima naji tawang gunbak lama pimpasi kristunu lama chepo choga san nahunin iji shuje tawang gunbak rimuchi si zuyu gindunbo hanginang si donu kiwi shabden nin tsime yundin donu san nahunbor hanginang udibgo lunting ka tawang deshnu dik monbak lirim banang chazang dudur Hangi Samondo to Sun Sundur, Hangina Dao Shuji, Na Hindiga, Sigun Shuji, Injiga Sigur, Lunting Gang, the Liga Susan Nansa.
1: Samachar Kisat, Vishal Sharma. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय

0: अधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applicants are related to the manufacturing of products, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents, including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the National Treasurer of the party. B.L. Santosh has been appointed as Organizational National General Secretary. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as National General Secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas, including Dr. Himang Joshi as the Yuva Morcha President, Roop Kumari Chaudhary as Mahila Morcha President and Bansilal Gurjar as Kisan Morcha President. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi

0: has congratulated the newly appointed national office bearers of the party and those who have been given various responsibilities. Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the Secretary Department of Higher Education, DG of the National Testing Agency and other senior officials in New Delhi. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all examination processes and submit a report on the corrective action taken. The Qatar India remittance service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient and accessible channel for cross-border remittances, particularly benefiting the large Indian community in Qatar and their families in India. The initiative combines the extensive reach of postal networks with India's digital public infrastructure to provide an efficient and convenient channel for cross-border remittances. India's ace shuttler PV Sindhu has advanced to the second round of the women's singles event at the BWF World Championships in New Delhi. The former world champion dominated Ireland's Sophia Noble, winning 21-7, 21-11. Meanwhile, in the women's double, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have also progressed to the second round. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at the stumps on day 3 of the first test in goal. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस डॉक्टर दिव्या पांडे से पोषण युक्त बागवानी विषय पर भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज के चौथी सत्र के छात्रा खंडू पेमा और तेंजिन चटन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। मैं हूं खंडू पेमा और मेरे साथ है मेरी सहपाठी मिस तेंजिन चटन। हम दर्जी खंडू राजकीय महाविद्यालय की चौथी सत्र के छात्र हैं। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस डॉक्टर दिव्या पांडे जी को। तो डॉक्टर मैम, हम आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
3: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग यानी पोषण युक्त बागवानी के बारे में कि पोषण युक्त बागवानी क्या होता है और यह हमारे स्वस्थ व जीवन शैली के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग क्या होती है।
3: न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग जो है वो हमारा कि थ्रू आउट द ईयर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स ये सब कैसे बैलेंसिंग अमाउंट में आपको मिले वो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि पोषण युक्त कैसे रहेगा। मीन्स जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने में यूज कर रहे हैं वो मिक्स करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमारा पोषण बागवानी जो यूज करने का मकसद ये है।
2: जी मैम, तो अगला सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि आज के समय में पोषण युक्त बागवानी की क्या महत्व है।
3: पोषण युक्त बागवानी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ये है कि आपको थ्रू आउट ईयर वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स का सेवन हम कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपके प्लेट में मिलता रहे पूरा साल, और जो भी आपका वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो मिक्स वाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उस पे ध्यान देना है हमें, और वो हमारे डाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल

0: वेजिटेबल्स की वो 300 से 400 ग्राम पर डे हमारे डाइट में वेजिटेबल्स होना चाहिए। इसी के साथ हमारा फ्रूट्स भी 100 ग्राम पर डे हर दिन आपके डाइट में होना चाहिए। तो ये जो पोषण वाटिका आपका जो गवर्नमेंट का है न्यूट्रिशन किचन गार्डन, उसमें हम फुलफिल कर पाते हैं जब इस तरह से गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसको अच्छे से सुचारू रूप से करके ढंग से लगा के एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट नहीं करना है इसमें, और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को यूज करना है। तो ये सब करके हम पोषण बागवानी को बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि पोषण युक्त बागवानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही हमारे पर्यावरण तथा हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत लाभदायक होती है।
0: अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो पोषण बागवानी है वो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हेल्दी है आपका, और इनकम जनरेशन का भी काम करता है, क्योंकि जो थ्रू आउट द ये जो सरप्लस वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसको हम मार्केट में ले जाके सेल करके भी एक अच्छा आमदनी का सोर्स है, हमारे लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं, और आर्थिक आपका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा आपका एक पोषित जो है किचन गार्डन। और आपका खुद का भी जो जिसके भी घर में इस तरह का न्यूट्रिशन किचन गार्डन अगर है तो उनके घर में भी जल्दी कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मिक्स करके खा रहे हैं प्लस पर डे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो इस नाते वो हेल्दी रहेंगे और ये अच्छा है।
1: जी मैम, तो जैसा कि हम कहते हैं कि घर में लगाई गई सब्जियां और जो फल है वह बाजार से खरीदी गई सब्जियों और फलों से कई बेहतर होते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण के मामले में घर की जो सब्जी या फल है वह बाजार की चीजों से कैसे बेहतर है। मैम,
0: बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जो घर में लगाई गई सब्जियां हैं उसमें हमने पौधों को टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, जो हमारे किचन के वेस्ट हैं वो पानी उसमें जाते हैं, प्लस जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं खाद बनाते हैं उसका यूज करते हैं, तो मीन्स कि उसमें कोई भी केमिकल्स हमने यूज नहीं किए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो वो एक लार्ज कमर्शियल पैमाने पे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है उगाते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो वो अपना बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं उसमें। तो एक फार्मर्स को बार बार समझाने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता रहता कि कितना प्रपोर्शन में हमें केमिकल यूज करना है, कितना अमाउंट में डालना है, एक पौधे को कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइक टोमेटो में एंडोफिल का बहुत ज्यादा यूज है वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो बार बार जो है उनको अमाउंट नहीं पता है कि किस अमाउंट में डालना चाहिए एंडोफिल को, तो ये चीजें जो है उनको बाहर से जो ली गई वेजिटेबल्स है उस पर डाउट रहता है कि उसमें जो है उनका जो प्रपोर्शन है फर्टिलाइजर्स यूज करने का वो ठीक नहीं होगा, वो हमारे लिए अनहेल्दी होंगे। लेकिन जो हम अपने किचन गार्डन में लगाएंगे अपने खाने के लिए यूज करेंगे उसमें जो है हम उस तरह के जो नेचुरल केमिकल है उसका यूज करेंगे, तो इस वजह से वो हेल्दी होते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गांव या निम्न आय वाले परिवार यानी लो इनकम वाले परिवार है उनमें ज्यादातर लोगों में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की समस्या देखी जाती है, तो यदि हम पोषण युक्त बागवानी करें तो इस समस्या को कम करने में कैसे मददगार हो सकती है।
0: ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर हम न्यूट्रिशन किचन गार्डन एक जो विलेज है जो कम आय वाले हैं उनके लिए यूज करें, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड है, अगर हम उसका सेवन करते हैं अच्छे से तो वो हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, मीन्स कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर फार्मर्स जो है अपने खेती में न्यूट्रिशन किचन गार्डन का यूज कर रहा है उस तरह से, जो एक ऑब्जेक्टिव उसका है किचन गार्डन का किस तरह से लगाना है उसका यूज कर रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, तो वो निश्चित तौर पर कुपोषित नहीं होंगे और माल नरिश नहीं होंगे, वो अच्छा नरिशमेंट होगा उनका और हेल्दी रहेंगे और जल्दी उनको कोई बीमारी नहीं होगी।
1: जी बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अगला जो वार्तालाप है मिस तेंजिन छुटुन जी जारी रखें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैम जो किचन गार्डनिंग यानी पोषण वाटिका की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समय तथा जो जानकारी के अभाव के कारण वो लोग इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति पोषण वाटिका यानी किचन

0: गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे कर सकती है, यानी उन्हें किन किन बुनियादी चीजें यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होंगी?
1: न्यूट्रिशन किचन गार्डनिंग करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगना है उसमें। बहुत बेसिक आपके ही जो सराउंडिंग एरिया मीन्स कि जो आपका घर है उसके चारों तरफ जो आपके पास खाली ज़मीन है उसी का यूज करके उसी को प्रॉपर बना के और उसमें जो बेड तैयार करेंगे उसमें बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ही तरह के वेजिटेबल्स नहीं लगाने हैं उसमें, हर बेड में अलग अलग मीन्स कि जो आप 7 डेज एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज में जो आप एक 7 बेड जो तैयार कर रहे हैं तो हर बेड में हर तरह के वेजिटेबल्स होने चाहिए। कुछ जमीन के नीचे निकलने वाली सब्जियां हैं, कुछ क्रीपर्स हैं जो पेड़ के ऊपर होने वाले हैं, कुछ जो है आपके लटकने वाले हैं वेजिटेबल्स, तो इस तरह से हर तरीके का ये वेजिटेबल्स जो यूज करेंगे तब जाके वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा और इस तरह का यूज करना चाहिए।
0: जी धन्यवाद मैम। तो मैम ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास मैम जमीन की जो कमी होती है मैम, जैसे कुछ लोग फ्लैट्स में रहती है, तो मैम क्या वो जो है गमलों या फिर छत में पोषण वाटिका कर सकती है?
1: हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पोर्च है या जो उनके पास ओपन एरिया है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसमें वो पॉट्स जो है थोड़ा चौड़े शेप के वो लेके उसमें जो है उगा सकते हैं।
0: जी तो मैम जैसे हमारे तवांग के क्षेत्र में अलग अलग मौसम में भी अलग अलग किस्म के फल या सब्जियां उगाते हैं, तो मैम एक पोषण वाटिका में ऐसी कौन कौन सी मौसमी सब्जियां फल या औषधीय पौधे हैं जिन्हें उगाना उपयुक्त होगा मैम?
1: अगर आप तवांग के बारे में बात करना चाहेंगी तो मैं उसके बारे में आपको विशेष करके बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे विलेज में जाके विजिट किया है, देखा है, तो उसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि कोई एक वेजिटेबल्स मीन्स कि अगर कहीं पे रेडिस लगा रहे हैं तो केवल रेडिस लगा रहे हैं उनके पूरे किचन गार्डन में, चिली तो चिली ही पूरा लगाया जा रहा है, फिर आपका ये लाई पत्ता है तो केवल लाई पत्ता लगाया जा रहा है। तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर वो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगाना चाहें तो उसमें आप सरसों का पत्ता भी लगाइए, पालक भी लगाइए, इस तरह का मिक्स करके अगर लगाएंगे, लेट्यूज लगाइए, इस तरह के मिक्स करके लगाने से आपकी बॉडी में पोषक तत्व जो लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा या जमीन के नीचे वाली सब्जियों से मिलेगा जो लटकने वाली, वो तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो कोशिश करिए केवल एक तरह के वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में मत लगाइए, वो फिर आपका न्यूट्रिशनल किचन गार्डन नहीं होगा।
0: जी धन्यवाद मैम। जब कोई जो है मैम किचन गार्डनिंग करते हैं यानी पोषण वाटिका करते हैं, तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपने पोषण वाटिका में रासायनिक खाद या कीटनाशक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर लेते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होते, तो मैम इसके अलावा ऐसे कौन से प्राकृतिक और कम लागत वाले विकल्प हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो?
1: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना भी तरह का न्यूट्रिशन किचन गार्डन है उसमें केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब वो न्यूट्रिशनल कहाँ रह गया? ठीक है, तो आप न्यूट्रिशनल किचन गार्डन की अगर बात कर रहे हैं तो केवल उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, आपके जो नीम बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो यूज करना है उसके लिए, प्लस आपका वर्मी कंपोस्ट खाद खुद का जो किचन से वेस्ट जो आपका वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का निकल रहा है या जो उसका पानी का डायरेक्शन जहाँ पे आप वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं या अपने अनाज को धुल रहे हैं, दाल को चावल को बनाने में जो पानी निकल रहा है वो कोशिश करिए कि आपके उसी खेती में जाए जहाँ पे आपने न्यूट्रिशन किचन गार्डन किया है, तो वो आपका हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा और ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर्स रहेंगे।
0: जी जी बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपकी जो सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए जरूर लाभदायक रही होंगी। तो मैं चाहूंगी कि आगे का वार्तालाप मेरे साथी खंडू पेमा जारी रखे।
2: जी मैम, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी जो है वो करने से एक महिला को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कैसे मददगार है?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और वुमेन को सशक्त बनाने के लिए इसका बहुत अहम भूमिका है न्यूट्रिशन किचन गार्डन का। सबसे पहले तो वो खुद का हेल्थ उनका बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह की वो हेल्दी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करेंगे और अपनी जो पूरी फैमिली है उसको वो इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खिलाएंगे उससे बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो भी सरप्लस वेजिटेबल्स है जो मार्केट में ले जाके सेल कर रहे हैं

0: और प्लस वो एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने आसपास के लिए और लोगों के लिए कि किस तरह से उसने न्यूट्रिशनल किचन गार्डन करके प्लांट वे में बना के प्लांट वे में उगा के सब्जियों को और खुद भी खाया है और फार्मर्स के बीच में ले जाके सेल भी किया है, जो आसपास के एरिया में लोग नहीं जानते होंगे वो भी जानेंगे, उससे उनका चौमुखी विकास होगा।
1: जी जी मैम, हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारी जो महिला श्रोताएं हैं वो इस बात से ज़रूर प्रेरित होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जहां किसी परिवार या स्वयं सहायता समूह ने इस अवधारणा को सफलतापूर्वक अपनाया हो?
0: अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है, अभी न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पे मैं 1 ईयर से काम कर रही हूँ, जिसमें जो मुझे दिखाई दी है वो यहाँ पे एक है, ये मिसेज नवांग छुजम जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो वेजिटेबल्स है और जो वो ग्रो करते हैं वो अलग अलग है, एक ही तरह की क्रॉप वो नहीं लगाती हैं, नहीं यूज करती हैं। और मैडम का FPC है खुद का, वो उसकी फाउंडर मेम्बर हैं, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है फार्मर्स को देखने के लिए, वो वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं।
1: जी मैम, और इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के छात्राएं हैं उन्हें पोषण युक्त बागवानी से कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि उनमें पोषण और प्रकृति के प्रति भी जागृत हो।
0: जहाँ तक न्यूट्रिशन किचन गार्डन की बात आती है तो उनके सिलेबस में एक लेसन होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन किचन गार्डन होना चाहिए, उसके अलावा उनका जो न्यूट्रिशन का कोई अगर चैप्टर होगा तो वो फिर एक ट्रेनिंग उनको दिया जा सकता है, फिर उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बताया जा सकता है कि किस तरह से न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, किस तरह करने से उनको बेनिफिट होगा। और बहुत जरूरी है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया या एडोलसेंट गर्ल बॉय जो भी है, इस एज में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइफ में कितना महत्व है, ये अगर उनको आइडिया हो गया तो अपने स्कूल से ये नॉलेज पाके वो अपने घर पे जाके पेरेंट्स को बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो जाके फिर हेल्दी फैमिली तैयार होगी।
1: जी जी बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आगे की वार्तालाप जो है वो दिन छुट्टन जारी रखें।
2: जी धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत है, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि क्या पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी अन्य संस्थानों द्वारा कोई योजना या ट्रेनिंग दी जाती है, यानी किसी प्रकार की सहायता, अगर हाँ तो वो आम जनता यानी आम लोगों तक कैसे पहुँचती है?
0: बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, मैं भी और भी लाभ इससे उठाएंगे फार्मर्स हमारे। जो हमारा KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें मैं जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन कम्युनिटी साइंस हूँ, इसमें है कि मेरा जो ऑन फार्म ट्रायल है वो न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पे है। इसमें हम फार्मर्स को सेलेक्ट करते हैं और पहले फार्मर्स को थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल सीड, जो सीजनल वेजिटेबल सीड है वो उपलब्ध कराते हैं, देते हैं, और फार्मर्स को बताते हैं किस तरह से आप लाइन स्विंग करिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए, वो फार्मर्स को देके और फिर उनको उन वेजिटेबल्स का नॉलेज भी देते हैं कि ये खाने से उनको हेल्थ में क्या सुधार होंगे, कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहा है और उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वेजिटेबल सीड प्रोवाइड करता है सीजनल, और फिर उनको लगाने के तरीके बताता है, सोइंग करने के तरीके बताता है, कैसे प्लांट का ये नर्सरी करना है, कितने दिन पे उसको ट्रांसप्लांट करना है, ये सारी चीजें बताते हुए, और मिक्स क्रॉपिंग करना है, ये सारी चीजें उनको बताता है कि हम लोग का जो संस्था है, और उनको थोड़े अमाउंट में वेजिटेबल सीड भी प्रोवाइड करता है।
2: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए जरूर जानकारीदायक रही होंगी। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंचे हैं। तो अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दें ताकि वे इस पोषण वाटिका को अपनाएं और अपने घर को हरा भरा व पोषक बनाएं।
0: मेरे तरफ से तमंग वासियों को यही संदेश है कि आप जितना हो सके सबके सब न्यूट्रिशनल किचन गार्डन, जो अपने आसपास के सराउंडिंग जो खाली एरिया है उसमें किचन गार्डन तो सबको ही करता है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में आपको कैसे करना है वो चीज बातों का ध्यान रखें। कोई भी प्लांट लगाते वक्त वो प्लांट हमारे लिए कितना हेल्दी होगा इस बात का बहुत ध्यान रखें। सीजनल वेजिटेबल्स लगाएं और कोशिश

0: नया जो वैरायटी आ रही है, नया जो सीड आ रहा है या जो कोई नया वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको लगाने की कोशिश करें और हर तरह का वेजिटेबल्स लगाएं। मेरा यही कहना है उनसे, केवल एक तरह का वेजिटेबल्स लगा के वही खाने से उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें तो वो हेल्दी रहेंगे।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्या जी। आपने किचन गार्डनिंग के बारे में बेहद सरल, व्यावहारिक और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपकी बातों से हमें यह समझने को मिला कि किचन गार्डन सिर्फ पौधे उगाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका बहुमूल्य समय देने और इतनी सहजता से ज्ञान बांटने के लिए हम आकाशवाणी तवंग की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आज का यह संवाद हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगा और वे भी अपने घरों में किचन गार्डन की शुरुआत करेंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवंग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस डॉक्टर दिव्या पांडे से पोषण युक्त बागवानी विषय पर भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थी दोरजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज के चौथी सत्र के छात्रा खंडू पेमा और तेंजिन छोटन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म दबंग से राहत फतेह अली खान और श्रेय घोषाल की आवाज में। शब्द रचना है फैज अनवर की व संगीत है साजिद वाजिद का।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म मोहब्बतें से। लता मंगेशकर, उदित नारायण, उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली बातोदकर, प्रीता मजुमदार और शाहरुख खान।

फिल्म मोहब्बती के संगीत के साथ कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 200 से अधिक आतंकियों और नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर उनके विध्वंस हमलों की साजिशों को भी नाकाम कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर समन्वित अभियान चलाकर इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया। उन्होंने इसे आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का शानदार उदाहरण बताया। श्री शाह ने कहा है कि आईएसआई द्वारा वित्त पोषित इस समूह के ठिकानों से IED पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाली ग्रेनेड पिस्तौल, लाइव कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरों सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। शुशा ने कहा है कि ये नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। चौथे स्तोतंग यिंगकियांग विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरोल वांग ने आज यिंगकियांग टाउनशिप में 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें एयरफील्ड और कब्रिस्तान के पास स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यिंगकियांग शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित ये केंद्र ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करेगा। यहाँ रिसाइकिल योग्य सामग्री को व्यवस्थित पृथक्करण और रिकवरी की जाएगी, जिससे स्वच्छता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और नगरपालिका कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसके बाद श्री लीला ने यिंगकियांग के सीमार मार्केट में वेंडर मार्केट का उद्घाटन भी किया। ये सुविधा स्थानीय विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित एवं उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ सुव्यवस्थित व्यवसायिक गतिविधियों और शहरी सार्वजनिक स्थानों के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगी। बाद में विधायक ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यिंगकियांग के अकादमिक भवन का भी उद्घाटन किया। नई आधारभूत संरचना से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के साथ अनुकूल शिक्षण वातावरण मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे जिला मुख्यालय में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। तवांग पुलिस अधीक्षक तस्तारा की पहल पर जिला पुलिस तवांग ने आज 11वां सांग्यांग ग्यात्सो हाई अल्टीट्यूड आउटडोर स्टेडियम तवांग में स्वच्छता अभियान आयोजित किया। गत 15 अगस्त को हाल ही में संपन्न हुए मिराक लामा लोद्रोई क्यात्सो इंडिपेंडेंस कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम परिसर में काफी मात्रा में कचरा जमा हो गया था। परिसर को फिर से स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के माध्यम से समुदाय को सार्वजनिक स्थानों और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ, साफ सुथरा और कचरा मुक्त रखने का व्यापक संदेश।

किया गया। जिला पुलिस ने नागरिकों विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले लोगों से सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के साथ विकसित करते हुए कचरे का उपयुक्त निपटारण सुनिश्चित करने की अपील की। तिरप जिले में 9 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान 2026 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। अभियान में जिले भर में विद्यार्थियों, अधिकारियों और आम जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गत 9 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पहले दिन तिरंगा बुलेट रैली, क्विज प्रतियोगिताएं, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम पर

0: ने कला एवं संस्कृति विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तिराप के सहयोग से किया। रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशंस कल्चर एंड हेरिटेज रिवॉच आरोग्य पंचक्रम एवं वेलनेस सेंटर रिवॉच ने आज अपने परिसर में पंचक्रम चिकित्सा पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। आज से आगामी 26 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में इच्छुक चिकित्सकीय थेरेपिस्ट और आम जनता के सदस्य शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति में से एक पंचक्रम के बारे में लोगों को व्यवहारिक और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण का अनुभव प्रदान करना है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आम जनता में पंचक्रम चिकित्सा और चिकित्सकीय लाभ और इसके समग्र स्वास्थ्य संबंधी महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। साथ ही इच्छुक पुरुष और महिला थेरेपिस्टों को पंचक्रम चिकित्सा की व्यवहारिक तकनीकों, प्रक्रियाओं और क्लिनिकल बीमारियों का प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यावसायिक स्तर पर व्यवहारिक दक्षता प्रदान करना है। ईटानगर मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें पापुमपारे भी शामिल है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की अधिक आशंका जताई गई है। और भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु नई दिल्ली में जारी BWF विश्व चैंपियनशिप की महिला एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani Itanagar, the news read by Morgan Bagra. MLA 34 Tuting Yingkyong Assembly Constituency, Alo Lubang, today inaugurated three major development projects in Yingkyong Township. The project includes Material Recovery Facility Yingkyong, located near the airfield and burial ground. Developed under the Swachh Bharat Mission, the facility will strengthen solid waste management in the township through systematic segregation and recovery of recyclable materials, contributing towards improved cleanliness, environmental protection and scientific management of municipal waste. This was followed by the inauguration of the vendor market at Simar Market, Yingkyong. The facility has been developed to provide local vendors and small traders with an organized and suitable marketplace while facilitating orderly commercial activities and better management of urban public spaces. Later, MLA Lubang inaugurated the academic building of Government Higher Secondary School Yingkyong. The new infrastructure is expected to provide improved academic facilities and a conducive learning environment for students, thereby strengthening educational infrastructure at the district headquarters. District Police Tawang, under the initiative of Superintendent of Police Tawang, Tasi Darang, conducted a cleanliness drive at the Galwa Sangyang Gyatso High Altitude Outdoor Stadium, Tawang, today. Following the recent conclusion of the Merak Lama Lodro Gyatso Independence Cup 2026 football tournament on 15th August, the stadium premises had accumulated a considerable quantity of waste and garbage left behind during the tournament. Taking the initiative to restore cleanliness, the initiative sought to convey a larger message to the community on the importance of keeping public spaces and surroundings clean, hygienic and litter-free. The district police appealed to citizens, particularly visitors to public places, to develop a sense of collective responsibility and ensure that waste is disposed of properly. The 9-day Har Ghar Tiranga Abhiyan 2026 concluded successfully in Tirap district today, witnessing enthusiastic participation from students, officials and the general public across the district. The campaign, which commenced on 9th August, featured a series of engaging and patriotic activities, including a Tiranga bullet rally on the inaugural day, quiz competitions, group and solo singing competitions on the national song Vande Mataram, social service activities, observance of Partition Horror Remembrance Day, and the celebration of the 80th Independence Day. The program was organized by the District Administration, Tirap, in collaboration with the Department of Art and Culture and the Department of Information and Public Relations, Tirap. The Arogya Panchkarma and Wellness Center, Rivaj, today launched a 10-day training program in Panchkarma therapy at its campus. Running from 17th to 26th August 2026, the program brings together aspiring therapists and members of the public for an immersive, hands-on learning experience in one of Ayurveda's most respected therapeutic disciplines. The training has been designed

फिल्म 72 आवर के संगीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म हम हिंदुस्तानी से मुकेश की आवाज में। शब्द रचना है प्रेम धवन की, व संगीत है उषा खन्ना का। इस गीत की हमें फरमाइश की है उर्गिलिंग विकास नगर तवांग से आप है संगीत प्रेमी लोपसंग तेंदा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म धड़कन से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिए इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है पेगांव से आप है तिंदन सोमू लामा सरिंग फुंसो पेमा टाशी तिंदन दवा तिंदन छोटा जम्बे फुंसो वंगमो करमो और करमो छुटन।

0: बस तुम रहते हो।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म डार्क द फायर से अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू की आवाज में। शब्द रचना है समीर के व संगीत है राजेश रोशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है यूं मदुंग तवंग से आप है संगीत सिरिंग और टशी ड्रामा चुम और यूसर बस्ती से आप है सोनम छुटन और कर्मा छुटन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर से। शब्द रचना है हजरत जयपुरी की व संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है गोलाघाट आसाम से आप है रोमेश पेट्रो, रूना पेट्रो और लकी।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म नगीना से लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है कोपर गांव से आप है सुरेश मलोड़े और वर्षा मलोड़े, और शेव गांव से आप है श्री राम गोंदाली और उषा गोंदाली।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शो की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों पर आकर

पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज इस कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो बैडमिंटन की ये विशाल प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। और आज पहले ही दिन पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद और उनके साथ साथ MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह अपनी पक्की कर ली है अपने मुकाबले जीतते हुए। आज कार्यक्रम में इसके बाद बात होगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गोल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में अपनी पकड़ कुछ और मजबूत कर ली है मैच पर, और पहली पारी के बाद भारत ने कुल 178 रन की बढ़त अपने हिस्से में हासिल कर ली है। और कार्यक्रम में बात होगी FIH हॉकी विश्व कप की, जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर लेकर के आया, जहां भारत को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की दुनिया के साथ, जहां BWF विश्व चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ हो गया। आज पहला दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास नजर आया, जहां भारतीय खिलाड़ी घरेलू समर्थकों के बीच अपने प्रदर्शन में एक शानदार निखार दर्ज करते हुए नजर आए। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स में अपने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला डबल्स में त्रिशा जौली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी और अब से कुछ देर पहले सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। इससे पहले दिन की पहली जीत भारत के लिए MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी लेकर के आई, जिसने दूसरे दौर में जगह बनाई। और इस प्रतियोगिता को कवर कर रहे हमारे संवाददाता भानु इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से सीधा। भानु, पहला दिन भारत के लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आया, इतना बड़ा आयोजन और उस पर इतनी सारी जीत, सोने पे सुहागा।
1: जी शक्ति, आपने एकदम सही कहा, भारत के लिए आज का पहला दिन विश्व चैंपियनशिप में बहुत ही बेहतरीन रहा। हमारे प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा। आज के दिन की जो हाईलाइट आयुष शेट्टी की जीत रही, जहां उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन CUG को 21-14, 13-21 और 21-19 से हरा दिया। वहीं हमारे बाकी खिलाड़ियों के लिए भी जीत उनके लिए बहुत आसान रही, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में सारे अपने गेम्स जीते और आज का दिन जैसा कि आपने कहा बहुत ही अच्छा रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपने आयुष शेट्टी की जीत का जिक्र किया कि किस तरह विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पहले ही दौर में चित किया इन्होंने और काफी हद तक आगे के दौर के लिए अपनी चुनौतियों को काफी सरल कर दिया है। काफी चुनौतीपूर्ण मुकाबला, सबसे कठिन जो है ड्रॉ आयुष को मिला था। पीवी सिंधु के मुकाबले के बारे में भी अगर भानु आप हमको बताएं, क्योंकि भारत की स्टार खिलाड़ी है, जब भी कोर्ट पे उतरती है भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें रहती है पीवी सिंधु पे कि वो किस तरह से अपने आगे की इस टूर्नामेंट को बिल्ड करते हुए नजर आएंगी।

0: जी बिल्कुल शक्ति, आज स्टेडियम का भी कुछ वैसा ही हाल रहा। स्टेडियम में सब लोग आज सिंधु को देखने आए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि वे मैच से कंट्रोल में बाहर थी। उन्होंने पहला गेम 21-7 से जीता और दूसरा गेम उन्होंने 21-11 से जीता। दोनों मैच में वो कंट्रोल में दिखाई दी। उन्होंने अपने बेहतरीन अटैक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, उनके स्मैशेस बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज थे और ओवरऑल उनका गेम आज बहुत ही अच्छा रहा।
1: जी बिल्कुल, आयरलैंड की सोफिया नोबल पर जो जीत दर्ज की, पूरा कंट्रोल जिसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल मैच, जहां आपका हर शॉट शायद वहीं जा रहा था जहां पे सिंधु चाहती थी। उन्होंने मैच के बाद अपने अनुभव भी कुछ इसी तरह साझा किए। डबल्स में भी भारत का दिन आज के लिए काफी लकी रहा। भारत की मिक्स डबल्स की एक जोड़ी और पुरुष डबल्स की एक जोड़ी पहले ही बाई पा के अगले दौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जब तक हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, भारतीय महिला डबल्स की दोनों जोड़ियां जिसमें त्रिशा जौली और गायत्री हैं, साथ ही साथ सिमरन की जोड़ी है जो पहुंच चुकी है अगले दौर में, और पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन ने भारत की जीत का खाता खोला था हरिहरन के साथ। डबल्स की परफॉर्मेंस पे कुछ कहना चाहेंगे भानु?
0: जी बिल्कुल, डबल्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही और स्ट्रेट गेम्स में जैसा कि आपने बताया, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने पॉला लोपेज और लुसिया रॉड्रिगेज की जोड़ी को हराया। पहले गेम में वे थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में दिखाई थी, लेकिन उन्होंने पहला गेम सिंगल डिजिट में ही खत्म कर दिया और दूसरा गेम उन्होंने 13 पे खत्म किया। और अगर बात करें हमारे पुरुष युगल जोड़ी की, तो उन्होंने पहला गेम बहुत ही आसानी से 21-16 से जीत लिया था। दूसरे गेम में उन्हें चोट, उनकी जो ओपोनेंट प्लेयर थी उनको चोट के कारण विड्रॉ करना पड़ा।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत भारतीय खिलाड़ियों के लिए जिस तरह का आज का पहला दिन गुजरा, और ये खिलाड़ी इसी लय को बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में शायद भारत को इस प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बेहतरीन एक अनुभव देके जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद भानु। और भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस स्टेडियम में खेलना उनके लिए एक नया अनुभव रहा। पीवी सिंधु ने कहा कि घरेलू मैदान पे खेलना हमेशा से एक अलग अनुभव जैसा है।
2: Playing first time here, first match here, it was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out it's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but sometimes, you know, when you actually get on the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
1: जी बिल्कुल, अपनी नब्ज पे किस तरह संतुलन रखना है यही सिंधु का अनुभव बताता है। और सिंधु ने अपने पहले मुकाबले को लेकर के स्पोर्ट्स कैन की टीम से क्या कहा ये भी सुनते हैं।
2: Yeah, of course I'm playing with her for the first time and I think more than anything it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play and I think more than anything I mean I was excited to get onto the court happening here in India so it was really good to you know get onto the court and I could see a lot of people cheering and supporting me I think that gave me a lot of confidence and I mean irrespective of whoever the opponent is it was just that I had to just play my game and give my best.
1: और दिन में भारत के लिए पहली जीत दर्ज करने वाले हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने भी अपने अनुभव साझा किए। अर्जुन ने बताया कि किस तरह मैदान में भारतीय प्रशंसकों का प्रोत्साहन देखने को मिला।
3: First round into the world championship, we didn't actually expect so many people come out and support. But as soon as we entered the main arena, we heard a lot of cheering when our names were announced, and that actually gave us an extra boost and extra energy. Definitely helped. I mean, conditions, I feel it's at par with the all other tournaments. Be it the last year's world championship, I think he had played. I think in Paris. I mean, we are at par with the level and the conditions that you're provided. But to play at home is obviously everybody asks the same question. But again, I feel every athlete would give the same answer because it's an added advantage.
1: जी बिल्कुल, एक शानदार एडवांटेज कह सकते हैं। और उनके जोड़ीदार और इस जीत में उनके सहभागी हरिहरन ने क्या कहा है ये भी सुनते हैं।
4: Dan coach asked me to try with Arjun because our game style was both game style was like fast. Dan coach saying was try for 4 tournaments. I said okay, I will try. So we played all 4 tournaments, continued the throw. Now is world championship year. We searched for Asia Games as well. I said thanks to coach first and thanks to my senior also.
1: जी बिल्कुल, एक अच्छा अनुभव अब साथ खेलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को हो चुका है। और इसी तरह का अनुभव गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने भी साझा किया, जिन्होंने घरेलू मैदान पर इस जीत को बेहद खास बताया।
5: बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है। I think the court conditions are pretty good. It's a huge stadium. Yeah, I think it's a little slow, sometimes fast, but I think we've adapted well. It's different for everyone. It's amazing. I mean, it's amazing to play in India. The whole stadium supporting for you, cheering for you, it feels great.
1: बैडमिंटन के कोर्ट पर इस बेहतरीन दिन के बाद अब बात की जाए क्रिकेट के मैदान की।

0: यहां गोल में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। अब श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। आइए सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
1: अपनी पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद भारत ने श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंकाई पारी समाप्त होने के बाद खराब मौसम के चलते आगे का खेल नहीं हो सका। पहली पारी में भारत के लिए पर्डिक्कल ने सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका को दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो के रूप में शुरुआती झटका लगा और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। महज 90 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। इसके बाद सोनल दिनुषा ने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला। निरोशन 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सोनल ने 100 रन का योगदान दिया। भारतीय खेमे से मानव सुथार ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो दूसरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन आज कह सकते हैं कि शिकंजा और कसा है। और इस पूरे मैच पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज का जिस तरह का खेल गया है, अब दो दिन का खेल बचा है और रणनीति पे तो बात होगी होगी, लेकिन अब तक कह सकते हैं कि कितनी पकड़ भारत की नजर आ रही है?
2: शक्ति, अभी श्रीलंका को 178 रन की जो है, भारत को 178 रन की बढ़त हासिल है। और इसी के साथ भारत जो है कल जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेगी तो कोशिश करेगी कि 170 या 200 रन बनाकर एक जल्दी टारगेट को डिक्लेयर करने के लिए देखेगी, जहां 350 से 400 रन का टारगेट दबाव बनाने के लिए काफी होगा श्रीलंका पर। और भारत इसलिए भी कल जल्दबाजी करता नजर आएगा क्योंकि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है। कितने सत्र खेले जाएंगे, कितने सत्र धुल जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि क्या ये कहना गलत होगा कि आज का दिन भारतीय गेंदबाजों का दिन रहा? जिस तरह से शुरुआत में श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई थी, एक वक्त पे लगा कि शायद कहीं मामला 150 को भी ना पार कर पाए।
2: जी बिल्कुल, शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत रखी। 90 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद उनकी एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, जहां सोनल दिनुषा ने बेहतरीन शतक जमाया और उसके अलावा निरोशन डिकवेला जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी 115 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो युवा मानव सुथार ने 4 विकेट लेकर भारत को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिलाया। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने आज 3 विकेट लेकर अपना 350 विकेट का कीर्तिमान जो है वो हासिल कर लिया, और इसी के साथ वो बाएं हाथ के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में, और 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं ओवरऑल जिन्होंने 350 विकेट का आंकड़ा जो है छुआ है। ऑलराउंड प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो चौथे ऐसे ऑलराउंडर बन गए जिन्होंने 4000 रन और 350 विकेट लिए हैं अभी तक टेस्ट क्रिकेट में।
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और वो अफगानिस्तान का मुकाबला जहां मानव सुथार ने अपना डेब्यू किया था और पहला ही मैच 6 विकेट, आज दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और 4 विकेट, तो काफी संभावनाएं इस खिलाड़ी में हमेशा से नजर आती हैं और कह सकते हैं कि टेस्ट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया है। और अब आगे भारत, जैसा आपने बताया कि कल नजर होगी कि किस तरीके से मैच पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए, कम से कम समय में जो है अपने एक अच्छा टारगेट स्कोर बोर्ड पे चढ़ाया जाए मेहमान टीम के लिए। और अब और क्या इस मैच से कुछ खास निकलता हुआ नजर आ रहा है भारत के लिए?
2: अगर भारतीय टीम यह मुकाबला जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में जरूर सबसे थोड़ा ऊपर जाएगी, और साथ ही साथ इसके साथ वो सीरीज भी जीतने के लिए देखेंगे क्योंकि अभी वो 5वें स्थान पर हैं, और ये दोनों मुकाबलों में जीत भारत को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट प्रदान करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर।
0: जी बिल्कुल, जैसा हमने कल भी बताया था कि इसके बाद अब अगली श्रृंखला जो है भारत की वो न्यूजीलैंड से है, जो 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेली जानी है। तो टीम चाहेगी कि जितने भी मुकाबले हैं उनको जीता जाए और WTC की फाइनल की दौड़ को और मजबूत तरीके से पकड़ में रखा जाए। और अब बात की जाए FIH हॉकी विश्व कप की, जहां आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। भारतीय टीम को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। विशेष, जिस तरह की पहले मैच में जीत थी वेल्स पर भारत ने 3-1 से बेहतरीन जीत दर्ज की थी, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत 2-1 की, लेकिन कह सकते हैं कि हरमनप्रीत एंड कंपनी थोड़ी सी अनलक्की रही।

0: ये शक्ति बिल्कुल भारत को पिछले मुकाबले से अपना काफी आत्मविश्वास था और मैच की पहली सफलता से ही मतलब इंग्लैंड ने जो है दबाव बनाना भारत पे शुरू कर दिया, जहां निकोलस बंदरुक ने 14वें मिनट में भारत को गोल करके बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद मुकाबला जो है 2-1 से आगे भारत ने बढ़त दी, लेकिन चौथे क्वार्टर में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
1: जी बिल्कुल, भारत ने एक बार करारा जवाब दिया जब पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया, फिर दिलप्रीत का गोल आया, लेकिन एक वक्त पे लगा कि भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में है। लेकिन उसके बाद मैच का वो तीसरा क्वार्टर जहां बैक टू बैक 5 मिनट के अंदर पहले स्टुअर्ट रश्मेर का गोल आया 40वें मिनट में, और 43वें मिनट में आपने जिस गोल की बात की क्रॉफ्ट हेनरी के, जिसने काफी हद तक भारतीय टीम के मनोबल को तोड़ा और उस बढ़त को जो भारत के हिस्से में थी इंग्लैंड की तरफ लाए, और आखिरी में निकोलस जिन्होंने पहला गोल किया था दूसरा गोल करते हुए इस मैच में भारत के लिए तमाम संभावनाओं को बंद कर दिया। हालांकि इंग्लैंड शीर्ष पे पहुंच चुका है ग्रुप में, भारत अपना दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से बुधवार को खेलेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
4: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर

0: 28 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
0: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड

0: की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
4: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा कर

0: का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
4: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारी

0: rupees under electronic components manufacturing scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on exam reforms, directs NTA to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. That's all in the news at 9. Good night.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम दांगपोक समा, शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे और शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तेरे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आपकी सेवा में कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, तकनीकी अभियंता श्री कमे अंगफो, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मी के साथ आपकी उद्घोषिका टाशी छुटन को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय।